थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

0: प्रार्थना अभवत्। आगच्छन्तु, संस्कृतं शृण्वन्तु, संस्कृतं वदन्तु। महाभारते वनपर्वणि यक्षप्रश्नाः सन्ति, अद्य तेषां विषये शृण्मः। द्यूतक्रीडायां कौरवैः पाण्डवाः पराभूताः, अतः ते 12 वर्षाणि द्वैतवने उषितवन्तः। तत्र भ्रमन्तः ते एकदा चिरकालं कुत्रापि जलम् एव न प्राप्तवन्तः। तेन धर्मराजः व्याकुलीभूत्वा वृक्षच्छायायाम् उपविष्टवान्। प्रथमं नकुलः इतस्ततः भ्रमन् एकं जलतडागं दृष्टवान्। सः ज्येष्ठभ्रातृराज्ञया जलम् आनेतुं तत्र गतवान्। ततः जलं ग्रहीतु कामः सः अकस्मात् अन्तरिक्षात् वाचं श्रुतवान्। भद्र, साहसं मा कुरु, प्रथमं मम प्रश्नानाम् उत्तराणि देहि, ततः जलम् आदस्व। नकुल सरोवर से पानी लेने ही वाला था कि अचानक आकाशवाणी सुनाई दी। अरे साहस मत कर, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, बाद में पानी ले। तम वाणीम अनादृत्य नकुलः जलम स्वीकर्तुम आरब्धवान्। नकुल ने उस आकाशवाणी की उपेक्षा की और उसने वैसे ही पानी लेना शुरू किया। नकुल सरोवर से पानी लेने ही वाला था कि अचानक आकाशवाणी सुनाई दी। अरे साहस मत कर, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, बाद में पानी ले। मूर्छितः सः तत्र एव मृतवान्। नकुल ने आकाशवाणी का अनादर करके पानी लेना शुरू किया तो वह मूर्छित होकर गिर पड़ा और मर गया। अनंतरम नकुलम द्रष्टुम सहदेवः आगतवान्। सोपि आकाशवाणीम् अनादृत्य मूर्छां प्राप्य मृतवान् च। एवं क्रमेण अर्जुनभीमयोः अपि सा एव गतिः अभवत्। अन्ते स्वयं युधिष्ठिरः भ्रातॄन् अन्विष्यन् तडागं प्राप्तवान्। तडागस्य तीरे स्वभ्रातॄन् पतितान् मृतान् च दृष्ट्वा सः नितान्तं सम्भ्रान्तः दुःखितः च अभवत्। तदा सः अपि ताम् आकाशवाणीं श्रुतवान्। आकाशवाणी श्रुत्वा सः उक्तवान्, भोः कः त्वं, के तव प्रश्नः? तदा एकः यक्षः तत्र प्रादुर्भूतः। एक यक्ष महा दिखाई दिया। यक्षः उक्तवान्,
1: भद्र, यक्षः अस्मि अहम्। मम आज्ञाम् अनादृत्य जलं पातुं न शक्नोषि। मम प्रश्नानाम् उत्तराणि देहि।
2: अहं यथामति भवतः प्रश्नानाम् उत्तराणि दातुं प्रयत्नं करोमि, पृच्छतु भवान्।
0: इति युधिष्ठिरः उक्तवान्।
1: कथं मानवः उत्कर्षं प्राप्नोति?
2: सदाचारेण, न केवलं ज्ञानेन।
1: किम् अस्ति पृथिव्या अपि गुरुतरं, नभसः अपि उच्चतरं। पृथ्वी से श्रेष्ठ क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है?
2: माता पृथ्वीव्याः अपि गुरुतरा, पिता नभसः अपि उच्चतरः।
1: वायोः शीघ्रतरं किम्? किम् अस्ति वर्धिष्णुतरं तृणात्? वायु से शीघ्र क्या है, तृण से भी वेग से क्या बढ़ता है?
2: मनः वायोः शीघ्रतरं, चिंता तृणात् वर्धिष्णुतरा। मन वायु से शीघ्र है, चिंता तृण से भी वेग से बढ़ती है।
1: सर्वलाभेषु उत्तमः लाभः कः?
2: आरोग्यम् एव सर्वलाभेषु उत्तमः लाभः।
1: सर्वसुखानां किं सुखम् उत्तमम् अस्ति?
2: संतोषः एव सर्वसुखानां उत्तमम्।
1: किं त्यक्त्वा मनुष्यः सुखी भवेत्?
2: लोभं त्यक्त्वा मनुष्यः सुखी भवेत्।
1: कीदृशं राष्ट्रं मृतं भवति?
2: अराजकं राष्ट्रं मृतं भवति। राष्ट्र में अराजकता फैलने से राष्ट्र मर जाता है।
1: को योग्यः पन्थाः? योग्य मार्ग क्या है?
2: महाजने गतः योग्यः पन्थाः। जिस मार्ग से महाजन उत्तम लोग जाते हैं, वह योग्य मार्ग है।
0: युधिष्ठिर के उत्तर सुनकर यक्ष खुश हुआ। यक्ष असल में यमधर्म ही था। वह पांडवों की परीक्षा लेने आया था। युधिष्ठिर के चारों भाइयों को जिंदा करके उसने सबको आशीर्वाद दिया कि अज्ञातवास में कोई भी उन्हें न पहचान सकेगा, और वह अंतर्धान हो गया। यह महाभारत का एक छोटा सा भाग है, इसे बोलते हैं यक्ष प्रश्नः। इदानीम् अद्यतन प्रश्नः। सर्व सुखानाम् उत्तमम् सुखम् किम्? उत्तरम् अवश्यं प्रेषयन्तु। इदानीं श्लोकपठनम्। अष्टमोऽध्यायः श्लोकसंख्या 11-20 पर्यन्तम्। अध्याय 8 श्लोकसंख्या 11-20।

0: वेणुधुनी 90.4 एफएम केएलई गणसू पे आप ट्यून है और अभी हम सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज।
1: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज। और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
2: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि समझौते से ब्रिटेन में भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे।
3: ये समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21%

0: KLE ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೆಳಗಾವಿ
1: ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಭವಿ ಹಾಗೂ ನುರಿತ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮತ್ತು
2: ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಧಿಕಾತಃ प्रस्तावित समझौते से दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावना है। भारत आज से हैदराबाद में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करना है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की है। कोलकाता में कल कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। एक रिपोर्ट।
3: बैठक के बाद केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। राज्य सरकार के अंशदान के साथ अगले वर्ष मार्च तक पंचायत के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के लक्ष्य ग्रामीण रोजगार की अवधि को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। साथ ही VVG रामजी अधिनियम 2025 के तहत नए ग्रामीण रोजगार ढांचे को लागू किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष बल दिया जाएगा। बैठक में सड़क, रेलवे, मेट्रो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला तथा श्रम क्षेत्रों के 82,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 19 प्रमुख परियोजनाओं को भी समीक्षा की गई। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी कलकत्ता।
2: कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे। इनमें 9 राज्यों की 20 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। इन खनिजों में मोलिब्लेडेनम, ग्रेफाइट, ग्लूकोनाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, टाइटेनियम, टंगस्टन, पोटाश, लिथियम, सीजियम और रुबिडियम शामिल हैं। नीलामी के 7 चरण पूरे होने के साथ मंत्रालय ने 88 महत्वपूर्ण खनिज खंडों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की है। मंत्रालय ने कहा है कि खनिज क्षेत्र ने पिछले वित्त वर्ष में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 212 खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी हुई है। ये नीलामी प्रणाली की शुरुआत के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक है। इसमें 22 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अन्य देशों के लिए होर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए रास्ता बंद रहेगा। श्री ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमेरिका आज रात ईरान पर हमला करने वाला है। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमेरिका उसके सभी बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाएगा। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बड़े पैमाने पर हमले करते हुए बहरीन में हथियारों और भंडारण केंद्रों को निशाना बनाया है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
2: पश्चिम एशिया में हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: होर्मुज जलडमरू मध्य में दो व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए व्यापक पहल शुरू की है।
3: पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्षेत्र में संचालित प्रत्येक भारतीय नाविक की जहाजवार वास्तविक समय में निगरानी और प्रभावित प्रत्येक भारतीय नाविक के लिए समर्पित संपर्क अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारतीय नौसेना, डीजी शिपिंग तथा ईरान और ओमान स्थित भारतीय मिशनों के साथ 24 घंटे समन्वय बनाए रखने का भी निर्देश दिया। श्री सोनोवाल ने डीजी शिपिंग को फारस की खाड़ी, होर्मुज जलडमरू मध्य और ओमान की खाड़ी में संचालित सभी जहाजों पर तैनात भारतीय नाविकों की निगरानी के लिए एक परिचालन डैशबोर्ड स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नौवहन सुरक्षा, चिकित्सीय निकासी और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी के लिए निरंतर समन्वय बनाए रखने को भी कहा। केंद्रीय मंत्री ने जहाज मालिकों, पोत प्रबंधकों और भर्ती एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी भी भारतीय नाविक को पर्याप्त जानकारी, सुरक्षा और सहायता के बिना यात्रा के लिए बाध्य न किया जाए। रोहन के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की सुप्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होने जा रही है।
4: पवित्र शहर में जय जगन्नाथ के मंत्र गूंज रहे हैं और पूरी कल भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की भव्य रथ यात्रा देखने के लिए तैयार है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित धार्मिक त्योहार में से एक है। ये सालाना यात्रा भाई बहन देवताओं की श्री जगन्नाथ मंदिर से श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा का प्रतीक है। भक्त श्री गुंडीचा मंदिर को मौसी माँ यानी भगवान की मौसी का घर मानते हैं। इस पवित्र रथ उत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पूरी पहुंचे हैं। तीन भव्य रथ नंदीघोष, तालध्वज और दर्प दलन को खूबसूरती से सजाया गया है और वे मंदिर के सिंह द्वार के सामने खड़े होने के लिए तैयार है। पूरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव सोने की झाड़ू से रथ के मंच की सफाई करेंगे, जिसके बाद भक्त रथ को ग्रैंड रोड पर खींचेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डेलस में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हरा दिया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंगहम में कल इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट पर 262 रन बनाकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 80 रन बनाए। अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच कल कार्डिफ में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध तेज होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, होर्मुज पर हक की जंग तेज, अमेरिका ने परमाणु संयंत्र वाले शहर बुशहर पर बम बरसाए, ईरान का बहरीन और जॉर्डन पर हमला, नाकेबंदी पर बड़े देशों ने जताई नाराजगी, चीन ने की सुरक्षित आवाजाही की अपील, कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल। वहीं नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ईरान के हमले में एक की मौत, भारत ने किया विरोध, होर्मुज में 2 तेल टैंकरों पर अटैक, ईरान के दूत को किया तलब। पत्र के अनुसार होर्मुज में 20% शुल्क से पीछे हटे ट्रंप, कहा अब ट्रेड डील होगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, गुलाम जम्मू कश्मीर में 9 प्रदर्शनकारियों की मौत, भारत ने जोर देकर कहा नागरिकों पर दमन और बुनियादी अधिकारों के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान जवाबदेह। पत्र के अनुसार पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी। अमर उजाला ने पहली बार पहली जीत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, लॉर्ड्स की 142 साल के इतिहास में यहां खेले गए पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की जीत का महत्व, इससे समझा जा सकता है कि जहां भारतीय पुरुष टीम को यहां पहली टेस्ट जीत जीतने के लिए 54 साल का इंतजार करना पड़ा था, वहीं महिला टीम ने पहले ही प्रयास में ये करिश्मा कर दिखाया। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, पहली बार तिमाही में 4,000 करोड़ रुपए का कारोबार पार, इंडिया पोस्ट ने रचा इतिहास। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नासा की अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन की अंतरिक्ष यात्रा शुरू।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज। और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: और अब तक हम सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज। आप सुनते रहे वेणुधुनी 90.4 FM KLE कनसु।
7: KLE कैंसर हॉस्पिटल बेळगावी
8: प्रप्रथम बारिगे उत्तर कर्नाटकद बेळगावियल्लि अत्यंत अनुभवी हागू नुरित वैद्यर तंड अत्याधुनिक मत्तु सुसज्जित यंत्रोपकरणगळोंदिगे।
7: KLE कैंसर हॉस्पिटल केलीस डॉक्टर प्रभाकर कोरे हॉस्पिटल एंड MRC हिंदुगडे नेहरू नगर बेळगावी आरोग्यक्के होस जीव कैंसर पीडितरिगे आशा किरणवाद KLE कैंसर हॉस्पिटल बेळगावी मूल सौलभ्यगळु।
8: KLE कैंसर हॉस्पिटल बेळगावियल्लि स्तन कैंसर रक्त कैंसर ಅನ್ನನಾಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್
7: ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ।
8: ವಿಳಾಸ KLE ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ KLE ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು MRC ಹಿಂದುಗಡೆ ನೆಹರೂ ನಗರ ಬೆಳಗಾವಿ।
7: ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 0831255250 ಮತ್ತು 2473777 ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 6360712326 और जस्ट डायल 1099।
8: इंदे बेटी नीडी KLE कैंसर हॉस्पिटल बेळगावी।
9: Seasons change, but your brilliance is timeless. P&G brings you the exclusive change of season offer.
10: Now get an incredible discount of 10,000 rupees per carat on the purchase of stunning diamond jewelry. Also enjoy up to 20% off on making charges of gold jewelry and a flat 20% off on making of silver.
9: Offer valid till 31st July 2026. Hurry! Visit to Mrs. Purushottam Narayan Gadgil, Saraf and Dwellers today. Terms and conditions apply.
11: KLE Pharmacy College, Umbalgavi, 2026-27 ಪ್ರವೇಶಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ ಬಸವನ್ ಕುರ್ಚಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯವುಳ್ಳ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ. ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್, ಫಾರ್ಮ್ ಡಿ, ಎಂ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು PhD ಸೇರಿದಂತೆ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ. ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆಗಳು: 100+ ವರ್ಷಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಅನುಭವ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 3,000+ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಲಿಷ್ಠ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾದ ಹೊಸ ಆವರಣ, ಔಟ್ಕಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಫಲಿತಾಂಶ ಆಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿ ಸೌಲಭ್ಯ, ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, NAC A+ ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು NIRF ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 08312471399, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9740639702, ವೆಬ್ಸೈಟ್ www.kleefarm.edu.

0: KLE's Dr. Prabhakar Kore Charitable Hospital, Nehru Nagar, Pahalgam. 24 hours of free services for OPD and IPD patients. Free ECG, free X-ray, free sonography and free lab services are provided to the needy patients. General operations, cataract and C-sections are done free of cost. More than 70 lakhs of OPD patients and 6 lakhs of IPD patients have been benefited by KLE's Dr. Prabhakar Kore Charitable Hospital. Around 3 lakhs of free surgeries, 85,000 plus free deliveries, 45,000 plus free cataract operations have been conducted. To avail the free services and treatments, please contact 99726-91578 and 77954-35314.
1: ಆರೋಗ್ಯವೇ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಹೆಸರು KLE ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಬಸವನಕುರ್ಚಿ, ಬೆಳಗಾವಿ. ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ, ಸುಸಜ್ಜಿತ ಓಪಿಡಿ ಸೇವೆಗಳು, ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಔಷಧಿ ವಿತರಣೆ ಹಾಗೂ ರೋಗಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೇವೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. KLE ಸಂಸ್ಥೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತರಬೇತಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಲರ್ಜಿ, ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು, ಸಂಧಿವಾತ ಮತ್ತು ಕೀಲು ನೋವು, ಮೈಗ್ರೇನ್, ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ತೊಂದರೆಗಳು, ಮಹಿಳಾ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ KLE ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್, ಬಸವನಕುರ್ಚಿ, ಬೆಳಗಾವಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9448145030 ಹಾಗೂ 8123871607.
2: Looking for a rewarding career in healthcare? Your journey starts here. Admissions are now open at KLE College of Physiotherapy, Hubballi, one of the leading institutions under KLE Academy of Higher Education and Research. Enroll in the Bachelor of Physiotherapy, BPT, a 5-year comprehensive program including 1 year of internships. Learn in modern labs and smart classrooms. Access digital libraries, hostel facilities and vibrant extracurricular activities. Don't miss this opportunity to step into a respected and fast-growing profession. Call now at 866-033-5252. 18 or at 9449821222. Visit kcpt.kaher.edu.in. KLE College of Physiotherapy, empowering your future in healthcare.
3: Seasons change, but your brilliance is timeless. P&G brings you the exclusive change of season offer.
4: Now get an incredible discount of 10,000 rupees per carat on the purchase of stunning diamond jewelry. Also enjoy up to 20% off on making charges of gold jewelry and a flat 20% off on making of silver.
3: Offer valid till 31st July 2026. Hurry, visit to Mrs. Purushottam Narayan Gargir, Seraph and Jewelers today. Terms and conditions apply.
1: KLE ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜು ಬೆಳಗಾವಿ. 2026-27 ಪ್ರವೇಶಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ ಬಸವನ ಕುರ್ಚಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯವುಳ್ಳ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ. ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು, ಬಿಫಾರ್ಮ್, ಫಾರ್ಮ್ ಡಿ, ಎಂ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು PhD ಸೇರಿದಂತೆ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ. ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆಗಳು, 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಅನುಭವ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 3,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಲಿಷ್ಠ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾದ ಹೊಸ ಆವರಣ, ಔಟ್ಕಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಫಲಿತಾಂಶ ಆಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿ ಸೌಲಭ್ಯ, ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ನ್ಯಾಕ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು NIRF ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 0831247139, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9740639702, ವೆಬ್ಸೈಟ್ www.klefarm.edu.
0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसु. भाषा संगम लेकर आई हूं मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे स्वरा. दोस्तों, आज भाषा संगम में आप एक अलग ही आवाज सुनने वाले हैं. एक नहीं, काफी सारी अलग अलग आवाजें सुनने वाले हैं. और भले ही ये आवाज अलग अलग है, पर इन सभी आवाज का सार एक ही है और वो है कबीर. कबीर ये नाम हम हिंदी किताबों से जानते हैं. हम जैसे, यानी आप, मैं और हमारे सारे लिसनर्स जैसे आम लोग हैं, उनके लिए कबीर के दोहे यानी हिंदी के
5: सिलेबस का हिस्सा हुआ करता था, चाहे वो स्कूल में हो या कॉलेज में हो। आज हमारे स्टूडियो में कुछ ऐसे युवा स्टूडेंट्स आए हुए हैं जिनका भी वास्ता शायद शुरू तो हिंदी किताब से ही हुआ था, पर आगे चल के उन्होंने कबीर को अपनी लाइफ में किस तरीके से अपनाया है और कबीर उनको किस तरीके से गाइड करते हैं या वो अपनी लाइफ में कबीर को कैसे रिलेट कर पाते हैं, इस अनुभव को शेयर करने के लिए हमारे साथ आज चार स्टूडेंट्स मौजूद हैं। उनका नाम है सानवी, अरहान, हेमांग और सृष्टि। वेलकम एवरीवन, वेलकम टू आवर शो।
6: थैंक यू।
5: मैं बताना चाहूंगी कि ये चारों और इनके साथ और छह लोगों की टीम सब मिलके अनहद नामक एक प्रोग्राम प्रेजेंट करते हैं और ये एक अपने आप में अनोखा प्रोग्राम है। न ये नाटक है न कोई संगीत का प्रोग्राम है, पर कहने जाओ तो ये दोनों ही हैं। पर इसके साथ एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपनी जिंदगी के कुछ सवालों के जवाब अपने आप ही ढूंढ लेते हैं। तो शुरू करते हैं आज का शो और सुनते हैं इन बच्चों से कि इनका अनहद क्या है और ये कबीर को अपनी लाइफ में क्या समझते हैं, क्या मानते हैं। शुरू करते हैं सानवी से। सानवी, व्हाट इज अनहद?
6: Anhad is a show that we do on Saint Kabir. Like you already said, it's not a, what can we say, it's not a singing program. It is a drama. It is a natak. It is a natak that includes everybody. Audience bhi humare saath include hote hai.
5: Achha.
6: So, we talk about Kabir, the Kabir that we have understood. And we just want to tell and sing our Kabir.
5: Okay.
6: Through Anhad.
5: Okay. अरहान, मुझे बताइए, ये एक प्रकार का नाटक है, तो ये नाटक आप स्टेज पे है, ऑडियंस सामने बैठी है, या किस तरीके से आप ऑडियंस को कैसे इंक्लूड करते हैं इस प्रोग्राम में?
7: ये जो बेसिक कमर्शियल नाटक होता है कि ऑडियंस आगे बैठेगी और जो परफॉर्मर्स रहेंगे उस स्टेज पे, दिस इज नॉट लाइक दैट। द ऑडियंस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द नाटक दैट वी आर डूइंग। When we sing Kabir, it's along with the audience. Audience is singing with us. We share about our experiences, that how we relate to Kabir. And it is a one-on-one discussion with the audience. And that is what it makes it special.
5: ओके, तो इस शो का फॉर्मेट तो हमें समझ में आ गया। अब इस शो की स्क्रिप्ट लिखी किसने है और किस तरीके से इस शो ने रूप लिया, मुझे बताएंगे हेमंग
8: जी? सो स्क्रिप्ट पर से नहीं है, इट इज ऑल फ्री फ्लोइंग।
5: ओके।
8: और जो स्टोरीज है वो हमारे खुद के है।
5: अच्छा।
8: प्रोग्राम का फॉर्मेट ऑफ कोर्स वैभव भैया ने लिखा हुआ है। उन्होंने हमें समझाया कि ऐसा क्यों है। एंड इट इज वेरी ब्यूटिफुली डायरेक्टेड। देयर आर पॉजेस, ठहराव है, एनर्जी है, कनेक्ट है। सो इमेजिन अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल डूइंग द सेम थिंग बट एवरीवन इज अननोन टू द अदर।
5: ओके।
8: This is what makes it so special and scripted नहीं है to large extent.
5: Okay. सृष्टि, मुझे बताइए कि ये scripted नहीं है, free flowing है, जिसे हम मराठी में मुक्त छंद भी कहते हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस कैसे करते हैं और आपको, मतलब एक हमारे दिमाग में रहता है ना कि अभी मैं ये कहूंगा फिर ये वो कहेगी फिर हम ये प्रॉप उठाएंगे ये एक्शन करेंगे, हाउ डू यू मैनेज ऑल दीज थिंग्स व्हेन यू एक्चुअली डोंट नो कि अब क्या होने वाला है?
6: As Hemang said, वो scripted नहीं है, पर बिकॉज हम हमारे किस्से बता रहे हैं उसके लिए ना तो प्रैक्टिस की जरूरत है ना ही प्रिपरेशन की। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। देयर इज अ फॉर्मेट टू द शो व्हिच इज प्री डिसाइडेड, बट सिंस वी आर शेयरिंग आवर ओन स्टोरीज इट डजंट लुक स्क्रिप्टेड बट इट इज फॉर्मेटेड।
5: ओके। तो जैसे हेमांग ने नाम लिया वैभव भैया का, जो इस शो के डायरेक्टर है वैभव लोकुर, आप इस शो में अपने अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं और फ्री फ्लोइंग शो है, थोड़ा अलग सा शो है जहां पर ऑडियंस भी पार्टिसिपेट करती है, तो मैं जानना चाहूंगी कि इसमें वैभव ने आपके किस तरह की मदद की?
6: जब शुरू हुआ था, इसकी तालीम जब शुरू हुई थी, तब किसी को पता नहीं था कि इसका फॉर्मेट कैसे होगा। एक्सपेक्ट तो ये कर रहे थे कि प्रोसेनियम फॉर्मेट होगा।
5: ओके।
6: और हम एक जगह बैठेंगे और ऑडियंस सामने बैठेगी और हम गाएंगे या बताएंगे कुछ बात करेंगे, पर जब प्रोसेस हुआ उस प्रोसेस में सब बिल्ड हुआ है, इवॉल्व हुआ है, चाहे वो गाने हो, चाहे स्क्रिप्ट हो, चाहे कोरियोग्राफीज हो जो दिखते कोरियोग्राफ नहीं है पर है।
5: ओके।
6: इन द प्रोसेस ही हैज मेड अस लर्न इट आवरसेल्फ्स, ही हैज नॉट टॉट अस लाइक टीचर, टिपिकल टीचर की असा असा है। ऐसा नहीं था।
9: He has given you just concepts and you have worked on and around those concepts.
7: I joined the show quite later. So about when I was performing Kabir, it needs a lot of work. I need to understand what those songs mean. वो क्या मतलब है? And breaking it down is very difficult.
9: Okay.
7: You need like I feel that connecting it to your story was the most difficult part. And someone who has been the catalyst to do that was Vaibha.
9: Okay. Now tell me why Kabir? Kabir ही क्यों चुना? या फिर इस theme का idea कहाँ से आया? कहीं तो इसका जन्म हुआ होगा. तो how did you find this Kabir?
8: I think Kabir is different and special for three main reasons. First being there is a subtle hint of rebellion in what he says.
9: Okay.
8: कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़ ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार. अगर पत्थर को पूजने से भगवान की प्राप्ति होती है तो मैं पहाड़ ही पूज लेता हूँ, बड़ा भगवान मिल जाएगा. बट ऐसा नहीं है, ये चक्की भली है जिसमें पीस के पूरा संसार का पेट भर जाता है. तो देयर इज वन सटल हिंट ऑफ रेबेलियन व्हिच आई ऑनेस्टली लाइक बिकॉज आई रिलेट अ लॉट टू इट.
9: ओके.
8: बॉर्न लेफ्ट हैंडेड सो बहुत although my family did support me being left-handed. हाँ, मतलब कभी कभी ऐसा डांट खाया है कि लेफ्ट हाथ से नहीं करते, प्रसाद नहीं लेते, खाना नहीं खाते and all of that. But I didn't of course go into all of that. And that is why I relate to Kabir.
9: Okay.
8: Also the second reason being he also talks about surrender. जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले. I can't oppose the very nature and net of life. मैं कर सकता हूँ जो मुझे चाहिए जितना मेरे हाथ में है. But I can't oppose it.
9: Yes.
8: That is what makes Kabir so special.
9: आपने तो अपना reason बता दिया कबीर क्यों. कोई और शेयर करना चाहता है कबीर क्यों?
6: मेरे लिए कबीर क्यों वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन विल बी कबीर सबके लिए अलग है. शायद जो कबीर सानवी को समझा है और जो मुझे समझा है वह बहुत अलग है. इसके पहले जो भी गाने मैंने सीखे हैं उसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग परिभाषा नहीं होती थी. बट कबीर ने मुझे वो स्पेस दिया है कि मेरा कबीर शायद सबसे अलग है.
9: ओके.
6: मुझे जो समझा है वो कबीर अलग है. And that's why Kabir.
9: Okay. So, आपकी लाइफ में कबीर कैसे आए और क्या वो ऐसी चीज थी या कौन सा ऐसा दोहा था जो जिसने आपकी लाइफ को पकड़ लिया या आपने कबीर को पकड़ लिया अपनी लाइफ में? So, what was that? Please share.
10: How Kabir came into our lives was कि स्कूल के बुक्स में दोहे थे. But after that, there was no connect. कबीर के बारे में हमने उसके बाद कुछ नहीं पढ़ा आफ्टर स्कूल एंडेड. आफ्टर दैट आफ्टर अ ईयर व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर मुझे मेरे और एक फ्रेंड ने तन्मय ने ऐसा बताया कि वैभव दादा इज डूइंग अ शो, सो वुड यू लाइक टू वॉलंटियर. एंड आई वॉन्टेड टू वॉलंटियर. आई डिडंट इवन नो व्हाट द शो वॉज अबाउट.
9: ओके.
10: सो आई टेक्स्टेड हिम एंड देन ही सेड कि ये मीटिंग ला एंड वी मेट. And that's when he told us that we had to sing. हम में से कोई नहीं गाता है.
9: Okay.
10: सिर्फ सृष्टि गाती है. We all protested कि हमें गाना आता ही नहीं है, हम गा ही नहीं सकते, ये हो ही नहीं सकता. What Kabir has done to me is now it's been a year that we are singing Kabir. And somewhere I have felt कि anybody can sing Kabir.
9: Yes.
10: Kabir became relevant in that way also. Something that I thought that I could never do. I'm actually doing it for every show. I'm singing for every show. Later, Vaibhav Dada told us that hame research karna hai. We have to bring information about Kabir and discuss it every day. That's how Kabir actually came back into my life, I would say.
9: Okay.
10: कि स्कूल की किताबों के बाद डायरेक्टली आफ्टर अ गैप ऑफ अ ईयर कबीर केम इनटू आवर लाइव्स बिकॉज ऑफ वैभव दादा. टू आंसर योर प्रीवियस क्वेश्चन व्हाट इज हिज कंट्रीब्यूशन. या
7: फॉर मी इट वाज वेरी फनी फॉर मी दैट हाउ आई गॉट इनटू कबीर. आई न्यू कबीर, आई हैड रेड अबाउट इट इन स्कूल्स टेक्स्ट बुक्स, बट देन व्हेन दीस पीपल वर डूइंग देयर फर्स्ट शो. The first show happened on 2nd of August and Srishti happens to be my best friend. So then she was like, "Tujhe mere show ko aana hi padega, tu nahi aayega to dekh." So then that's when for the first time I came to the show and when I experienced Anhad, it stayed with me. Hmm. I went back home and then it stayed with me. I wrote a review on how Anhad was.
9: Hmm.
7: And after 6 months, I guess, Srishti asked me that, do you want to do Anhad?
9: Hmm.
7: I said, mujhe gana to aata nahi hai, but still I will be doing it.
9: Okay.
7: I don't know why. And yeah, that's what I started. Then I started coming to the rehearsals.
9: Hmm.
7: And I started researching about Kabir a lot.
9: Hmm.
7: And I feel that is when it got more relevant to me. Because when I started reading that, it was far more vast. I came to know about the following. I came to know about the Kabirpanthis.
9: Hmm.
7: And that's when I felt that agar itne sare log follow kar rahe, then there is definitely something about
9: yes.
7: it. And then after that, I started finding the meaning of the songs. In the initial stage, obviously, ChatGPT, Google. But then I was told that, no, you have to find your own meaning.
9: Right.
7: The hunt started. And then after that, a few days, when we performed Kabir, by the second show, everyone had a different meaning. And yet, we were on the same page and we used to perform.
9: Hmm.
7: And I think that is what snapped everything. And then after that, Kabir has stayed with me forever.
9: Okay. What about you?
10: Arhan said ki first, he came as audience.
9: Hmm.
10: And now he is performing. I would say that is the magic of Anhad.
9: True.
8: So, mere liye bhi, of course, school se hi shuru hua. Chauthi, paanchvi kaksha mein ratna hi tha. But I started to relate to Kabir really in 8th, 9th grade, COVID ke baad.
9: Okay.
8: When I started to understand ki jitna bhi main oppose kar lu, jo mere haath mein nahi hai, wo nahi hai. Aur there is the second part ki Kabir is also an agnostic believer of God. Ki Bhagwan hai, but murtiyon mein to pakka nahi hai.
9: Okay.
8: And that's... that is why I relate to him so much, because even I don't really think ki murti mein dhoondne se bhagwan milega ya mandir jaane se bhagwan milega.
9: So maybe Kabir taught you to find a divinity in your life and people around you, your day to day life and people around you.
8: Yes,
9: that is more practical way, I guess.
8: Yeah.
10: Yes.
9: And that is why maybe Kabir is still relatable. इतने सालों पहले जो कबीर ने कहा था वो आज भी हमको सही लगता है, क्योंकि इंसान अपनी जिंदगी और अपनी कहानी में उसने डिविनिटी को ढूंढना सिखाया. What about you? Tell me.
6: जब मैंने स्कूल के टेक्स्ट बुक में कबीर पढ़ा था तब मुझे वो एक रीजन के लिए पसंद था, क्योंकि बाय हार्ट करने में बहुत ईजी था. कुछ डिफिकल्ट नहीं था समझने में. बहुत इजी थे दोहे उसके. बट आई वाज वेरी अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट पीपल सिंग कबीर टू. एंड व्हेन आई हैपेंड टू जॉइन अनहद एंड आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू द वर्ल्ड ऑफ कबीर, आई गॉट टू नो दैट इट इज फार ह्यूज देन आई हैड इमेजिनड इट टू बी. एंड इनिशियली इन द फ्यू डेज व्हेन वी वर रिसर्चिंग, लाइक सैंडवी सेड, आई केम अक्रॉस वन दोहा, वन सॉन्ग, भजन, निर्भय निर्गुण गुणरे गाऊंगा. दैट वॉज द पॉइंट वेर आई थिंक आई सरेंडर्ड. आई स्टिल डोंट नो वाई, स्टिल फाइंडिंग. एंड मे बी आई, लाइक आई सेड, कबीर इज डिफरेंट फॉर एवरीबडी. एंड नाउ वी आर ऑन द पाथ टू फाइंड न्यू मीनिंग्स इन द सेम सॉन्ग्स.
9: ओके.
6: फॉर आर सेल्व्स, नॉट फॉर द टीम, फॉर आर सेल्व्स. एंड दैट इज वाई.
9: ओके. Now, you have been doing Anhad since more than 1 year now, right? So, apne jitne bhi shows kiye, aapka show bilkul alag tha. Show ka topic jo hai, Kabir, ye bhi bahut alag hai. Yani, kabhi kisi ne socha nahi tha, nahi hoga ki ek natya roop mein Kabir ko laya jayega aur aisa natya jahan par audience bhi participate karti hai. To, audience ka response kaisa raha? Jab aapne, matlab pehle stage and audience aise hi show kiya tha ya pehle se hi audience involved thi ya audience ka response dekh ke aapne audience ko involve kiya? How was it?
7: When as I was the audience and then I joined, when I stepped into the space where Kabir was going to happen, I asked Sanvi and Tanmay and Srishti ki maine baithna kaha hai, tum log kaha perform kar rahe ho? And then they were like, tu kidhar bhi baith. And that is when I did not really understand that what exactly the concept was. But then when the whole performance happened, that time it all made sense. And the whole beauty of Anhad is that when you are alone, Kabir is for everyone. And that is what is being, and that is why we don't make the audience and the performers gap. And I think the audience has had a very beautiful response to it.
9: Means you sit amongst the audience and you perform.
7: Yes.
9: Okay. And do the audience join you in the songs and dohas?
7: Yeah, they do.
9: और फिर आप जैसे अपने अनुभव बताते हैं और कबीर गाते हैं, तो ऑडियंस कभी शेयर करती है अपना अनुभव कबीर के बारे में? When you are performing or during your performance, anybody आके खुद volunteer करके बताता है कुछ कबीर के बारे में या कोई अनुभव शेयर करता है?
10: कबीर के बारे में अनुभव नहीं शेयर किए किसी ने, बट शो के बारे में किए हैं, आफ्टर द शो व्हाट दे हैव फेल्ट, इफ एनीबॉडी वांट्स टू शेयर.
6: जैसे कि आपने पूछा था कि पहले से ही ये फॉर्मेट है कि आपने देख के किया था, तो पहले से ही ये फॉर्मेट था कि ऑडियंस के साथ ही बैठ के परफॉर्म करना है. इनिशियली मुझे भी नहीं पता था कि ये कैसे होने वाला है. हमने तालीम की थी बहुत पहले कि अज्यूमिंग ऐसे ऐसे होगा शो के दौरान, इधर ऑडियंस बैठेगा, आपको ये करना है. पर पहले शो तक ये पता नहीं था कि एग्जैक्टली होने क्या वाला है, हमें परफॉर्म एग्जैक्टली कैसे करना है. और पहला जब शो हुआ 2 अगस्त 2024 को, तो तभी पता चला कि ये क्यों हुआ था, ये क्यों था, इसके पीछे का कारण क्या था. और ऑडियंस का रिस्पॉन्स इज बीन वे मोर देन वी हैड एक्सपेक्टेड. And they feel welcoming, and the fact that they come to each one of us and say "Changla zhala ha," and maybe that is what Anhad gives to them, the energy of welcoming, the fact that they come and talk to each one of us, they feel like talking to us. I think that is what.
9: Okay. कबीर हर एक इंसान को अंतर्मुख होने पर मजबूर करता है, is what I feel, that is what Kabir is for me. तो कबीर की कौन सी बात ने आप लोगों को अंतर्मुख होने पे प्रेरित किया था? व्हाट मतलब क्या ऐसी चीज थी जो सोचने पर आज मजबूर हो गए कि नहीं कबीर की बात तो सही है? मेरे लिए कबीर इज माय फ्रेंड, माय कंपेनियन, जिसके साथ हम कोई भी बात शेयर कर सकते हैं, या कोई कान पकड़ के बोलेगा कि ये ऐसा नहीं ऐसा करो, दैट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप आई शेयर विद कबीर. सो व्हाट डू यू थिंक?
7: फॉर मी व्हेन आई टॉक अबाउट कबीर और इन जनरल व्हेन आई टॉक, व्हेनेवर समथिंग डिफरेंट इज हैपनिंग टू यू और लाइक समथिंग यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, दैट्स व्हेन यू नीड टू गो बैक टू योर फंडामेंटल्स एंड बेसिक्स. एंड आई फील दैट कबीर इज समवन हु रिमाइंड्स मी ऑफ दोज, लाइक व्हेन ही सेज आखिर ये तनख्वाह कब मिलेगा, दैट इज व्हेन आई फील ग्राउंडेड. When he says भजोरे भैया राम गोविंद हरि, राम नाम को सुमिरन कर लो सिर पे मौत खड़ी, we know that राम नाम को याद करना is very important, but we somewhere forget. And when I sing Kabir, I think it gives me a sense of realization. And every time I sing it, there is an add up to the sense of realization.
10: Good. Like Arhan said, the realization. On 5th July of last year, Bindu Malini sat in front of us and she sang Naiharva. All of us were, we had tears in our eyes. We didn't know why we were crying. But I think Kabir made me realize that maybe what I am living might be an illusion, and I am really, really far from the reality. And Kabir is the path to get to that reality for me.
9: Okay.
6: What Kabir is for me is, it has changed my perspective of looking towards everything. Like before, I used to look at things at a very surface level. And now, even maybe, I've not touched the core, maybe. I'm on the path of touching the core. But I might not even. But I've just started. And maybe it feels very easy through this path than any other path for me.
9: True.
6: That's why.
9: Okay.
8: To me, Kabir seems very inspiring. For lack of better words, because he basically tried to do something no one of his time would. That is, he tried to question things. मुझे नहीं लगता किसी और ने to that extent try किया होगा कि बोल दिया ना मंदिर में ना मस्जिद में भगवान नहीं है. Where do you find him? इतना हम लोग ढूंढ रहे हैं. Where do you find him? He says मैं तो हूँ विश्वास में. That to me seems very inspiring.
9: Okay. बात तो सही है ना, विश्वास है तो ही है, फिर वो मंदिर हो मस्जिद हो कोई भी जगह हो या अपना मन हो. सो आप एक एक दोहा शेयर करना चाहेंगे कबीर का अपना फेवरेट?
10: ओके. कबीर का एक भजन है घट घट में पंछी बोलता है, उसकी सबसे फेवरेट लाइंस मेरी यही है कि सब में सब बन आप बिराजे, जड़ चेतन में डोलता है घट घट में पंछी बोलता है. तो लाइक हेमांग जस्ट सेड कि मंदिर में नहीं है भगवान, ना ही मस्जिद में है, फिर कहाँ है? मे बी दैट एनर्जी इट एग्जिस्ट एवरीवेयर इन यू, इन मी, इन ऑल ऑफ अस.
9: What about you?
7: This doha has been like very special to me since I was a very young child. And when I came back to Anhad, like I got to मैं उससे वापस रूबरू हुआ. दिस माई ग्रैंड फादर यूज टू टेल मी अलॉट दैट इज माटी कहे कुंभार से तू का गोंधत मोए, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं गूंधूंगी तुए. सो दिस इज वॉट लाइक ही हैज ऑलवेज बीन टीचिंग मी अबाउट द फ्रेजिलिटी ऑफ लाइफ. बट देन आई रियलाइज दिस after years. I may not have had realized it if I wouldn't have come to Anhal. But then I'm very grateful that I did.
6: It's very difficult to choose one. But whatever is coming to my mind, I'm going to take that.
9: Okay.
6: There's one stanza in Neharva where he says, Bina Satguru apna nahi koi, jo yaha raah dikhave, kahat kabira suno bhai sadho, sapne nu pritam aave. I have nothing to explain about this. This is just my
9: self-explanatory.
6: Yeah.
9: Okay. Tell me, what about you?
8: Again, I think my idea rounds back to two, I would say, favorites. Zara halke gaadi haako, mere Ram gaadi wale. And na mandir mein, na masjid mein, main toh hoon vishwas mein. That is, I think that's my favorite.
9: Okay. आप ये जो अनहद प्रोग्राम करते हैं ऑडियंस के साथ, कबीर के साथ, तो हर एक का एक अलग अनुभव होगा. एवरी टाइम यू परफॉर्म कबीर, यू फील समथिंग डिफरेंट, यू एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट. तो कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आप?
8: वाइल बैक हमने किसी के श्राद्ध के बाद ऑन सिमिलर कॉन्टेक्स्ट एक शो किया था. एंड वी डिडंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द
9: ऑडियंस. यस.
8: Because whatever mindset they were coming out of, surprisingly, उन्होंने बहुत अच्छे से participate किया. They were very open about talking to us. क्योंकि बहुत सारे लोग थे जिन्हें हम पहचानते नहीं थे. Given the occasion, ये ऐसा नहीं लग रहा था कि वो गाना सुनने के लिए आए हैं. But they participated really well. I must say that it was one of my favorite audiences that day.
9: Okay.
8: The second was when we did it in a temple a couple of days back. Savantwadi mein ek jagah hai Pritish ke ghar pe. So udhar wo log to pakka gaane nahi sunne aaye the. Wo log floating crowd tha, mandir ja rahe the, prasad leke wapas nikal rahe the. We tried so hard to keep the audience. Starting mein hamein 10-15 minute lage just to grab the audience's attention. But once that happened, once we started with our songs, we had the audience till the end of 70 minutes.
9: Okay.
8: And that was honestly unexpected from my end. Kyunki un logo ka humse koi lena dena nahi tha.
9: Ji.
8: Na wo paise deke show dekhne aaye the, na hi unhe pata tha ki wahan pe show ho raha hai. Ekadashi thi us din, to bhajan chal hi rahe the pure din mandir mein. Out of them ek hamara tha.
9: Okay. Nice. Yani this is the real success of Anhad, I guess.
8: Yes.
9: कि किसी को बुलाए बिना या बताए बिना जब भी आप परफॉर्म कर रहे हो, फिर भी लोग पूरा रुक के पूरा शो देख के एंजॉय करके जा रहे हैं, कुछ समझ के सीख के जा रहे हैं. तो वहां पर आप सबकी मेहनत और कबीर की कृपा कह सकते हैं. ओके. डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस टू शेयर?
6: ऐसे बहुत एक्सपीरियंसेस हुए हैं जब शो के बाद फ्यू पीपल कम एंड हग अस, दे इवन क्राई. And that is very overwhelming for us as a performer. While we are performing, not expecting any of this, but still they feel like that and they come and hug us and they even cry sometimes.
9: Okay.
6: One of the things I would like to quote is recently in June, we had done a show, first show in a house. And after that, one lady came to me, but she said, there's a piece where I hum in the show. She said, when you hum, I get transported to another world.
9: Okay.
6: And that has stayed with me since that day. So that is very nice to hear.
9: The thing you said about people cry, what I feel is when people cry when they are touched, right? हम दुख में नहीं रोते, हम सुख में नहीं रोते. ये दुख सुख हमको छूता है, और जब कोई भी चीज मन को छूती है ना, तब आंखों में पानी और रोंगटे खड़े हो जाते हैं. दैट इज वाई मे बी यू आर टचिंग पीपल सोल एंड देर उनके दिल तक आपकी आवाज पहुंच रही है. सो डू यू वॉन्ट एनी थिंग एल्स टू शेयर ऑन दिस प्लेटफॉर्म अबाउट कबीर, अबाउट अनहद, और हाउ यू हैव इवॉल्व्ड ड्यूरिंग परफॉर्मिंग कबीर?
8: आई डिडंट स्टार्ट लॉन्ग अगो, 5-6 महीने हुए मुझे शुरू करके. बट आई कैन बोल्डली क्लेम आई डिड नॉट लाइक टू इंटरैक्ट विद ऑडियंसेस इन एनी गिवन स्टेट. because I'm not that person. I'm not a people person.
9: Okay.
8: I got here and then my bhavsada said ki logo se jaake baat karna hai. That was my I sweat.
9: Difficult task.
8: Yeah, difficult task.
9: Okay.
8: But over the course of 5 months, abhi I feel very confident in going and talking to people. ये लोग मुझे बोलते हैं कि बहुत बकबक करता है तू ऑडियंस के साथ. I don't know how much of it do I actually mean or it just happens all the time. Yeah.
10: Hemang is somebody who interacts with the audience the most.
9: So that is what Kabir has given him now.
10: Totally. Until what can I say? I was in first year. मुझे ना ही गाने सुनना पसंद था ना ही गाना आता नहीं है. That is a different part. But मुझे गाने ही पसंद नहीं थे in general. Now when I look at it, when I go for every rehearsal, every show of Anhat, it feels like I am addicted. I want to sing. I want people to sing. I want to listen to what we sing. I think that is how I have evolved.
9: Okay.
7: For me, in the start when I had come, I was very insecure about my voice. Very much. I just couldn't open my mouth and sing.
9: Okay. But let me give you a compliment. You have very good bass in your voice. Really? He knows that. Okay, continue.
7: As he knows that, he was the one. He was the one who gave me, who told me how I was supposed to deliver my voice and how important it was that I sing. And today, when I used to sit to sing, I used to be scared ki ye baju wale mera, they might say something about my voice. Now I sit in front of like crazy people, like crazy amount of people, and I sing and I don't mind singing loud.
9: Okay.
7: And I have started enjoying singing. I think that has brought sea blue of change in me. That is what given me. And the confidence to talk to people, as Hemang said, even the people who were close to me, I was very scared to talk. I was most scared to talk to the people who were scared to me. I think I have not yet reached there. But I think communication is something that has come to my life after doing the Veer.
6: Good. For me, it is not about singing and performing, about my voice. But it has been about, there is something more in the silences is what I've learned. There is something more in something that stays after the song or after the show. That is what I have learned, and how I have transformed personally is that people around me have seen that transformation more than me. Before I realized, they have told me that you have started listening more to yourself and to people. So that is what has changed.
9: Okay. It was very nice talking to you guys, and I'm sure हमारे audience को भी आपकी बातें बहुत पसंद आई होगी. काफी अलग तरीके की बातें हुई है आज के शो में. तो मैं अपने audience से request करना चाहूंगी कि आज का शो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा. हमारे साथ थे सानवी, अरहान, हिमांग और सृष्टि, और इनके काफी और साथी जो यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद है. अब सब मिलके कबीर के कुछ गाने, कुछ भजन, कुछ दोहे परफॉर्म करेंगे जो हम अगले एपिसोड में सुनेंगे. आप सुन रहे थे KLE वेणुद्वारी 90.4 FM. मैं आपकी होस्ट और दोस्त आरजेस्वरा आप सभी से विदा लेती हूँ इस वादे के साथ कि इस कबीर के अगले एपिसोड में आप कुछ प्यारी प्यारी आवाजों को सुनने वाले हैं और उनके साथ गुनगुनाने भी वाले हैं. जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, अपनी ऑनलाइन जिंदगी से थोड़ा सा ऑफलाइन वक्त निकालिए, और हम सभी के जीवन में जो कबीर है उसका अस्तित्व सिर्फ किताबों में नहीं है, उसका अस्तित्व हमारे जीवन में है, बस ढूंढने की जरूरत है. तो वो कोशिश जरूर कीजिएगा. बाय बाय एंड टेक केयर. सुनते रहिए KLE वेणुध्वनि 90.4 FM.
11: बेळगाव मधील KLE BM कंकणवाडी आयुर्वेदा हॉस्पिटल आरोग्य क्षेत्रामध्ये उत्कृष्ट सेवा देत आहे. तुमच्या रोगाचे योग्य निदान करून आवश्यक असणारे सर्व उपचार तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून दिले जातील. KLE BM कंकणवाडी आयुर्वेदा हॉस्पिटलचा मुख्य उद्देश रोगाचे निदान करणं आणि योग्य उपचार करणं, तुमच्या आरोग्याची काळजी घेणं हेच आमचे ध्येय. तुमच्या आरोग्याच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी आयुर्वेदिक उपचार घेण्यासाठी संपर्क करा KLE BM कंकणवाडी आयुर्वेदा हॉस्पिटल आणि महाविद्यालय शहापूर बेळगाव. फोन नंबर 08312486286.

गुड इवनिंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप सभी के फेवरेट शो बी रिलैक्स में। और आपने ट्यून किया है बेलगावी का सबसे बड़ा और पहला रेडियो स्टेशन वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु RJ आयुष के साथ। आज की इस प्यारी सी इवनिंग को और भी स्पेशल बनाते हुए शुरू करते हैं आज का ये स्पेशल एपिसोड डेडिकेटेड स्पेशली टू द मैजिक ऑफ म्यूजिक। टुडे विल एक्सप्लोर द हिस्ट्री पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ मेलोडीज दैट हैव शेप्ड जनरेशंस। तो हो जाइए तैयार, सिट बैक एंड रिलैक्स और सुनते रहिए हमारा शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु।

वेलकम बैक दोस्तों टू आवर चैनल वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसू। और आज हम बात कर रहे थे द मैजिक ऑफ म्यूजिक, यानी म्यूजिक की उस जादुई दुनिया के बारे में। दोस्तों म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो इंसान के हर मूड को बदल सकती है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, हम अपनी डेली लाइफ में रोज कहीं ना कहीं म्यूजिक सुनते ही हैं। चाहे हम घर पर हो, ऑफिस में हो या कहीं ट्रैवल कर रहे हो, म्यूजिक हमारी जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। चलिए शुरू करते हैं म्यूजिक के ओरिजिन से। देखिए एंशियंट सिविलाइजेशन से लेकर ट्रेबल चैंट्स तक म्यूजिक ह्यूमन एक्सप्रेशंस का एक इंटीग्रल पार्ट रहा है। लॉन्ग थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक पीपल यूज्ड टू प्ले म्यूजिक विद हैंड्स एंड द सोर्सेस अवेलेबल इन देयर रिचुअल्स एंड सेलिब्रेशन। मतलब उनके जो रिचुअल्स होते थे पहले या सेलिब्रेशंस होते थे, लोग उसमें जो सोर्सेस अवेलेबल होते थे या हाथों का यूज करके म्यूजिक प्ले करते थे और सेलिब्रेट करते थे और कम्युनिटीज को कनेक्ट करते थे थ्रू मेलोडीज एंड रिदम। और अब जब बात म्यूजिक की हो रही है तो सुनाते हैं आपको दिल को छू जाने वाले गाने। तो सुनते रहिए और बने रहिए हमारे साथ वेनु 90.4 KLE घना सुपर।

दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे शो बी रिलैक्स में। यू हैव ट्यून्ड इन टू बेलगावीज फर्स्ट रेडियो स्टेशन वेनु ध्वनी 90.4 KLE कनसुम। देखिए दोस्तों, देखा जाए तो बॉलीवुड म्यूजिक की जर्नी 1930s में इंडिया की फर्स्ट फिल्म अलम एरा से हुई, जिन्होंने म्यूजिक और सॉन्ग्स को अपनी स्टोरी बताने में यूज किया। कंपोजर्स लाइक नौशाद, SD बर्मन साहब, C रामचंद्रन कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द गोल्डन एरा ऑफ हिंदी म्यूजिक। दे मेड मेलोडियस एंड सोलफुल म्यूजिक विद क्लासिकल इन्फ्लुएंसेस। आपको बताएंगे कुछ और डिटेल्स भारत के गोल्डन म्यूजिक एरा की कुछ जबरदस्त गानों के बाद। तो सुनते रहिए और बने रहिए हमारे साथ हमारे शो बी रिलैक्स में, ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसू।

दोस्तों गोल्डन एरा यानी हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री का वो पीरियड जो बहुत ही चर्चित था, वॉज फ्रॉम 1950s टू 1970s। ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें लोगों ने कई लेजेंडरी सिंगर जैसे लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी को विटनेस किया और ये बन गए थे द वॉइस ऑफ बॉलीवुड। द म्यूजिक कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हैव अ क्लासिकल टच बट ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड विद द डिफरेंट जॉनर्स इंक्लूडिंग कव्वाली एंड म्यूजिक इन्फ्लुएंस्ड ट्यून्स। चलिए, और अब इतने लेजेंडरी सिंगर्स की बात हुई है तो सुनेंगे कुछ मनोरंजक गाने उसी स्टाइल में और देंगे जानकारी आपको म्यूजिक के बारे में और कैसे म्यूजिक ने शिफ्ट लिया 1980s में। तो सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू।

वेलकम बैक टू अवर शो बिरलैक्स और आपने ट्यून किया है वेनु ध्वनि 90.4 केएलई कनसु। मैं आपका प्यारा दुलारा आरजे आयुष आपके साथ बना हुआ हूँ और हम आज बात कर रहे थे द मैजिक ऑफ म्यूजिक थ्रू द इयर्स। तो जैसे कि मैंने आपको गोल्डन एरा के बारे में बताया, उसके बाद 1980s में म्यूजिक इंडस्ट्री में एक ऐसा शिफ्ट आया जिसमें मॉडर्न अरेंजमेंट्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक का उपयोग किया गया। म्यूजिक डायरेक्टर्स जैसे आरडी बर्मन साहब, बप्पी लहरी इंट्रोड्यूस फ्यूजन टू डिस्को बीट्स एंड पॉप एलिमेंट्स विच बिकम्स मोर पॉपुलर इन दैट एरा। मतलब फ्यूजन किया गया डिस्को बीट्स का और पॉप एलिमेंट्स का, जिससे ये पीरियड बहुत ही चर्चित रहा। चलिए सुनते हैं आपको वही धमाकेदार म्यूजिक ताकि आपकी शाम और भी रंग बिरंगी हो जाए। आप कहीं जाइएगा मत और सुनते रहिएगा वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु।

0: देख लिया कहां रहता हूं, जहां मौत जिंदगी पर हंसती है।
1: वो दिन दूर नहीं दीपक जब जिंदगी मौत पर हंसेगी।
0: लेकिन कब, कैसे?
1: मालूम नहीं। चलो मुझे घर पहुंचा दो।

हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस रंगीन शाम में जहां हम बात कर रहे हैं द म्यूजिकल एरास ऑफ बॉलीवुड। हमारा शो बी रिलैक्स चल रहा है और आप सुन रहे हैं वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु। 1990s में म्यूजिक के लिए एक मेलोडी ड्रिवन ईयर रहा, जिससे गाने कंपोज तो किए गए लेकिन अब उस म्यूजिक को क्रिएट करने के लिए यूज किए गए कीबोर्ड्स एंड सिंथेसाइजर्स। सिंथेसाइजर्स एक तरीके के इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है। इस इरा में म्यूजिक डायरेक्टर्स जैसे नदीम श्रवण, अनु मलिक साहब, जतिन ललित, इन्होंने कई हार्ट स्ट्रिंग म्यूजिक क्रिएट किए। और वहीं जब बॉलीवुड म्यूजिक 2000s में एंटर किया, इट एक्सपीरियंस्ड अ फर्दर डाइवर्सिफिकेशन। मतलब म्यूजिक बहुत अलग अलग जॉनरास में बढ़ गया, जैसे रॉक एलिमेंट, पॉप एलिमेंट, वो सब में, विद द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक फ्यूजन एंड रिमिक्सेस। और इस इरा के कई गाने और म्यूजिक डायरेक्टर जैसे AR रहमान, शंकर एहसान लॉय और प्रीतम ने भी काफी पॉपुलैरिटी कमाई। चलिए आपको सुनाते हैं इसी हार्ट स्ट्रिंग इरा से कुछ गाने। बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन वेणु ध्वनि 90.4 KLE का नसू पर।

दोस्तों आफ्टर ऑल दिस इयर्स बिटवीन 2000 टू 2010 एक ऐसा एरा आया जहां आइटम सॉन्ग्स डांस नंबर्स काफी पॉपुलर हुए। आपने भी कई सारे डांस नंबर्स और ऐसे आइटम सॉन्ग्स पे जो है ठुमके जरूर लगाए होंगे। ऑल दीज हाई एनर्जी ट्रैक्स ऑफन फीचर्स कैची बीट्स एंड बिकम मेजर अट्रैक्शंस फॉर द पीपल एंड द यूथ। मतलब ये यूथ में बहुत पॉपुलर हुए थे और आप देखा होगा पार्टीज और जो भी होते क्लब्स वगैरह में गानों का बहुत यूज हुआ था। ऑल दीज इयर्स बॉलीवुड म्यूजिक काफी ज्यादा इवॉल्व कर चुका है विद द टच ऑफ फर्दर डाइवर्सिफिकेशन एंड डाइवर्स म्यूजिक स्टाइल्स। कंपोजर्स जो है हर म्यूजिक पर जैसे इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजन इंडी म्यूजिक पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ऑडियंस को एक अलग एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहे थे। अब हम आपको सुनाते हैं ऐसे ही कैची बीट्स और डांस नंबर्स, तो टेंशन को कर दीजिए एकदम बाय बाय और सुनते रहिए हमारा शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 के अर्ली कनसूपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

0: नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।
1: यादों की

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

रंगधुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

0: नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसुम और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।
1: या

0: प्यारे,
1: जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धूनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

90.4 KLE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

सुनते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

करते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

0: नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के भारत में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के भारत में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों के बारात।
1: या

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड न

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसोपे आप ट्यून है। यादों के बारा हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धोनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरुथोनी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा

90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, पर तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

0: प्यारे,
1: जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, पर तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।